0: भिजवा रहे हैं।
1: पूछा हुआ
0: अरे
1: कुछ क्वेश्चन हो रहा है बात हो बैठने
0: देखो,